0: इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है, इनका नाम आपने आपने किस बेसिस, आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से देखूंगा।
1: ये हताशा और निराशा है जिन्होंने आज, यही कांग्रेस के लोग जब केरल में चुनाव जीतते हैं तो उस दिन इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है, जिस दिन तमिलनाडु में चुनाव जीतते हैं इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में जब हारते हैं तब वो इलेक्शन कमीशन दोषी, जब कर्नाटका में उनको जीत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन दोषी नहीं होता है, लेकिन जब गुजरात में जीत होती है तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में जब जीत मिलती है तो इलेक्शन कमीशन, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। और राहुल गांधी जी देश की जनता को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, टीएमसी के लोग, जनता ने उनको जो सबक सिखाया उसे सीखने की आवश्यकता है।
2: News from down south then, the Dharapuram bipole battle in the state of Tamil Nadu is turning increasingly bitter with the AIADMK, DMK and the TVK trading barbs. It's AIADMK chief Edappadi Palaniswamy who took a personal swipe at Chief Minister Vijay, saying true affection means living with your wife and children and that stage dialogues alone are not enough. The TVK has hit back now, saying that Vijay has never made personal remarks while questioning EPS over his electoral record and asking him to introspect why AIADMK leaders are switching sides. The bipole was triggered after sitting AIADMK MLA Sathyabhama joined TVK and is now contesting on a TVK ticket. AIADMK is seeking to retain SC reserved seat while DMK is looking to turn it into a three-way contest. All right, let's move on to other news that we are tracking. This is with regard to the Mekhadatu dam project. It's Tamil Nadu versus Karnataka war again, which has further escalated. DK Shivakumar, that is, saying that Tamil Nadu should send team to inspect Mekhadatu side. He's gone on to say that request made to meet Tamil Nadu Chief Minister on Mekhadatu. He's also said that the center

0: यकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: The 20th Asian Games are officially underway in

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: A healthier India doesn't happen in a day.
6: It starts with the health choices that we make every day.
7: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
5: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
8: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
7: One informed choice और एक healthier action.
5: Giving better health in more hands. Every day.

0: वो कर दी गई है, एसआईटी बना दी गई है, क्योंकि अब ये माम अब ये सुनने में आ रहा है कि कुछ बाहरी तत्व थे जो वो भी इन्वॉल्व थे हिंसा के अंदर, कौन लोग थे, किसके इशारे पे ये पूरी साजिश की गई, इन सारी चीजों की तहकीकात के लिए एसआईटी भी बना दी गई है।
1: जेदी सही जांच होए आ पंजाब सरकार दा हत्था है, क्योंकि वो जेड़ा लवली दा मालक सी उहदी कोठी च केजरीवाल रहिंदा सी, उहने कढ़ता उहनू, उहदे बाद पार्टी छड़ती। इन्हां दी आदत, इन्हां दा पिछोकड़ मैं पता है, आ झाड़ूआं लैंदा, जाण के हुण लगे है आ सारा कुछ आप ही शरारत करा रहे है। ते मैं स्ट्रांगली कंडेम करदा जो पुलिस ने कीता उत्थे नौजवान बच्चों ते।
2: देखिए, ये आम आदमी पार्टी का षड्यंत्र है, ये एक तरीका तौर तरीका है आम आदमी पार्टी के लोगों का, भाई ये उन लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं। यही लवली यूनिवर्सिटी में जो ये काम चल रहा है, इसके पीछे आम आदमी पार्टी सारे जितने, क्योंकि बड़े जितने भी ये गलतियां करते हैं उसको छुपाने के लिए इन्होंने इस किस्म का ये सारा षड्यंत्र किया।
3: जो एलपीयू में हो रहा है वो तो जेंजियो पे हमला है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बात को छुपाने के लिए जो गायत्री बिश्नोई का इश्यू चल रहा है, जिसने सरकारी घर के ऊपर कब्जा करके बैठी, मंत्रियों के सारे घर दिल्ली के लोगों को कब्जा दिए हैं, इस मसले पे जब पंजाब के मीडिया पे और सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप ये ड्रामेबाजी करके एलपीयू के अंदर हमला करवाते अरविंद केजरीवाल जी। छोटी छोटी बच्चियां, जैसे अभी परवेश जी ने कहा, वो जेंजी नहीं है, वो जेंजी हैं जिनके ऊपर हमला करवाया आपने। उन जेंजियों को डराकर धमकाकर आपने उनके मुंह बंद किए हैं, और अपने गुंडे भेजकर आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पे इसलिए हमला करवाया ताकि आप गायत्री बिश्नोई का ये मसला जो है उसको डाइवर्ट कर सकें।
4: Thanks now from Punjab. Now let's just get you the very latest when it comes to this fresh political row that's erupted over Telangana. It's the Chief Minister Revanth Reddy is ready the remarks that have been made on Lord Ram and Lord Shiv. Now Revanth Reddy has taken a swipe at the BJP, saying that the party has stolen Lord Ram and claimed that the Congress leaders are devotees of Lord Shiv. The Telangana Chief Minister also drew a contrast between the two gods, Ram and Shiva, describing Shiva as the god of the poor and Ram as the god of the rich. He further alleged that the BJP represents the interests. These are the interests of the rich, and compared the SR struggle to the slogan Simon Go Back. The BJP has strongly objected to the remarks made by Reddy, calling them offensive and accusing the Congress of disrespecting deities. The BJP said Lord Ram and Lord Shiv cannot be divided into North and South, and accused the Congress of pushing a communal agenda.
5: Very simple. हम द्रविड़ियन से, यहाँ के आर्यन से, हम शिवजी के भक्त हैं या राम जी के भक्त हैं? तो राम जी को बीजेपी ने
6: कैप्चर कर लिया,
5: चोरी किए। तो इट्स एमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हरे महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते कभी भी? देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हरे महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है। हम हरे हरे महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी। तो बीजेपी तो अमीर पार्टी है। तो इट्स ए सिंपल फंडा।
7: The statement of Mr. Revanth Reddy that Rama is different, Shiva is different, Hindus are not united, Rama is Dravidian, Shiva was Aryan, this type of statement made by Mr. Revanth Reddy, it appears to be in a ploy of him dividing the Hindus and uniting the Muslims. Varanasi has Shiva, Ayodhya has Lord Rama. Now both the places are from North India. How can we divide the Aryans and Dravidians and divide the gods? Mr. Revanth Reddy is playing to an international organization which wants to divide Hindu society in the name of caste, religion, and now he is bringing inter-religious fight between the religion.
8: The offensive remarks made by the Telangana Chief Minister disrespecting our most revered deities mirror the Hindu Virodhi Muslim League mindset of the top Congress leadership. These toxic statements also expose the Congress conspiracy to peddle a communal

0: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्गन मसाला।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands. Every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: life has made parents' time poor, and nowhere is this felt more acutely than inside our homes.
1: Extremely difficult to manage time for myself, and most importantly with the family, from commute and working hours combined together. Usually it's up around 13 hours a day. We hardly get time for ourselves, and obviously the personal choices and our own passion actually pushes to the bottom list.
2: 5 baje uthna, pani bharna, khana peena banana, bachcho ka alag, hamara alag. Meri beti 3 saal ki ho gayi, mujhe pata nahi laga. आप मानोगे बेटी मैंने 8 महीने की डाली थी, अब वो 1.5 साल की हो गई है, मुझे पता नहीं चला.
3: मैं घरों में खाना बनाने का काम करती हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत ही बिजी रहती है. खाना बनाना, दोपहर का भी करना, और फिर साथ साथ में बच्चों का भी ध्यान रखना, फिर अपना करना, तो दिन पूरा ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब 4 बज गए, कब 5 बज गए.
4: आई थिंक कैसे 8 बजते हैं पता नहीं चलता है, और वीकडे नॉर्मली 0 टाइप ही मिलता है, और इसीलिए वीकडे पे हम ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही छोड़ के आते हैं बच्चों को.
5: काफ़ी लेट टाइम मिलता है, रात को ही मिलता है, जो भी मिलता है सोने से पहले वही टाइम दे पाते हैं, अदरवाइज संडे जो हमारा ऑफ होता है उस दिन टाइम मिलता है.
3: बच्चों को संभाले या काम घर का करें, तो ये तो दोनों नहीं हो पाते हैं. बच्चों के लिए यहाँ पर छोड़ जाओ, तो अपना घर का काम जो होता है वो कर लो.
6: I think one of the biggest challenge that parents actually face today is they really want to be present, but they're unable to, because we're constantly being pulled in many different directions, whether it's work, whether it's household responsibilities, whether it's tech and digital or entertainment or WhatsApp groups or on our phones. We are constantly scheduling the next thing. We're never in the present. And there's always that something that's demanding our attention in that present moment.
7: यहाँ पर देखिए सर, क्योंकि ना हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर, है ना, अल्पसंख्यक बोल दीजिए, गरीब बोल दीजिए, हर तरीके के लोग होते हैं. तो चुनौती तो उनके पास यही है कि एक तो उनके पास ना समय नहीं है. आते ही वो गांव छोड़कर यहाँ पर आए हैं, कमाने खाने के लिए आए हैं, तो अपना सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, पूरा दिन उनका मतलब सिर्फ काम में ही बिजी रहता है. कोई कहीं काम करता है, कोई किसी तरीके में काम करता है, लेकिन बिजी बहुत रहते हैं. तो समझते वो भी हैं कि टाइम की कमी है बच्चों के लिए, उनके पास समय नहीं है, बट मजबूर है वो भी, क्योंकि कमाएंगे खाएंगे नहीं तो फिर घर कैसे चलाएंगे.
0: इफ टाइम इज फाइनाइट, हाउ डू वी अनलॉक इट? We can't magically create a 25th hour in the day, but there are hacks and tips to create and manage time and stop low priority clutter from stealing the hours we do have.
8: I think time poverty is a state of mind. I mean, I've actually felt that as I've gotten older, I have adequate time. A lot of people look at me and say, mother, CEO, you must be so busy, you know, you've done Shark Tank, you've done this, you've done that. And I think while lives are busy, I feel I can give adequate time to work and adequate time to home. The secret is prioritizing, managing time, being efficient. So I think time is something we can make excuses for, or time is something we can make effort towards. I do make sure that my son sleeps early. He sleeps at around 8 o'clock. That 7 to 8 is a time during the weekday that is kind of non-negotiable. And if I don't have to be at work or at an event, I'm home and I'm not doing any work. So 7 to 8 is sort of my sacred time. When you have time at home, make sure it is mindful time. There's no point saying I'm spending 8 hours with my child if, you know, those 8 hours are cranky. Those 8 hours or that 1 hour needs to be super mindful time. It needs to be time when you're fully consumed by the child. The biggest thing you can do for your child is constantly listen to them. If the child says, like if my son Remy says, mama, and I don't hear it and I ignore it, they grow up with this feeling that there's no one, I'm not feeling heard. And then that leads to tantrums, that leads to insecurity. When the child feels heard, they grow up in a very secure place that comes from love.
9: मेरा बेटा छोटा था, तो उसको साथ में आटा गूंथती थी, तो उसको एक छोटा सा दे देता था, चलो और कुछ नहीं तो मोटर स्किल ही तुम्हारी डेवलप होगी, है ना, और ये छोटी छोटी चीज़ें, दालें ढूंढो, भिंडी काटी है तो भिंडी में कलर करो, कपड़े मैंने सुखाए हैं तो उसको साथ ले लिया कि आ जा, अपने अपने कपड़ों को सेग्रीगेट करो, जो मेरे हैं वो आपके, तो इस तरह. और यही सेम चीज़ मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पढ़ाने का या कुछ करने का, तो एटलीस्ट जिस टाइम आप घर के काम कर रही हैं उस समय आप बच्चों को लो और बोलो साथ बेटे बैठ मेरे साथ, खाना बनाते हैं दोनों मम्मा बेटा, है ना.

आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities,

0: ITV World Summit 2026, A World Between Orders, 22nd and 23rd October, New Delhi. The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
6: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
7: High rate, check the audio.
5: Let's do it. Let's start.
8: Breaking story, we're jumping straight into it.
5: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
9: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw.
10: We're back to tell you about the Bachpan is Great Hour. Taking the Bachpan is Great Hour pledge is remarkably simple. Nothing to organize, nothing to buy, just 3 steps. Step 1, give the hour. Choose any day between October 2nd and 8th. Spend 1 full hour with a child, either your own or a child in your community. They decide what you will do together and you just follow. Step 2, look back. Once the hour ends, reflect on what naturally unfolded, whether it was creativity, storytelling, nature play, or quiet bonding without anyone planning for it. Step 3, share the moment. Post a photo or video using hashtag BachpanIsGreatHour. Email us or send a WhatsApp voice note describing the wonder you spotted.
11: So parents or koi bhi adult jo hai ek bacche ke around, wo us bacche se puche wo kya karna chahte hain aur us bacche ko lead karne de, but parents ko unke saath bas uska hissa banna hai us journey ka. जैसे एग्जांपल के लिए कोई बच्चा बोल सकता है कि मेरे को पार्क में घूमने जाना है, या कोई बोल सकता है मेरे को रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, या कोई मेरा बेटा है तो वो बोलता है कि मेरे साथ लेगो बनाओ. सो इस टाइप से बच्चा डिसाइड कर रहा है उसको किस चीज़ में मज़ा आएगा, बच्चा डिसाइड कर रहा है वो क्या करना चाहता है, और जो भी एडल्ट है, चाहे वो पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो कोई यंग कॉलेज के लड़के या लड़कियाँ हों जो अपने आसपास किसी बच्चे को देख रहे हैं, उन उसका हिस्सा बने. सो लेट द चाइल्ड लीड एंड द एडल्ट्स फॉलो इन एन अनइंटरप्टेड फॉर एन अनइंटरप्टेड 1 आवर. बचपन मनाओ में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं 8 वंडर्स ऑफ चाइल्डहुड. तो एक बच्चे के 8 वंडर्स हैं, प्ले है उसमें, एक सोशल बॉन्डिंग है, क्रिएटिविटी है, ऐसे 8 वंडर्स हैं. और ये प्लान करके नहीं आते, बचपन के 8 रंग एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, और ये प्लान करके नहीं देखे जा सकते. तो बेसिकली इस पूरे एक्टिविटी में आइडिया ये है, बचपन इज ग्रेट आर में आइडिया ये है कि आप 1 घंटे आपने एक बच्चे के साथ समय बिताया, उसकी गतिविधि का आप हिस्सा बने, और उसके बाद आप उस एक्टिविटी के बाद आप एक रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें थी, क्या प्ले था, क्या क्वाइट टाइम था, क्या सोशल बॉन्डिंग थी, क्या क्रिएटिविटी थी. अपने आप ही एक ही गतिविधि में, एक बच्चे के एक सिंगल एक्टिविटी में कई सारे पहलू हमको बचपन के देखने को मिलते हैं. तो उसको ऑब्जर्व करना, वो 8 वंडर्स ऑफ चाइल्डहुड में से कौन कौन सी चीज़ें हमको दिखाई दी. दूसरा, कोशिश ये करना है कि वो एक्टिविटी उनके फोटोग्राफ के लिए नहीं है, वो एक्टिविटी मेरे लिए एज एन एडल्ट उसका

0: हिस्सा बनने के लिए, लेकिन शेयर करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो वो एक कोई दूर का एक शॉट हो सकता है, या वो जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी का शॉट हो सकता है, या बच्चे का साइड से शॉट हो सकता है, पीछे से कुछ हो सकता है, बिना कंसेंट के ना हो। अगर आप कोई संस्था है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई कॉरपोरेट है, या फिर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, या कोई एनजीओ है, तो उनके लिए दो तीन चीज़ें। एक तो ये है कि क्या हम अपने संस्था के द्वारा अपने आसपास जितने भी एडल्ट्स हैं, हमारे टीम में, हमारी संस्थाओं में जो एडल्ट्स हैं, उनको इनक्रेज कर सकते हैं टू डू एन वन टू स्पेंड वन इन अनइंटरप्टेड आवर विद अ चाइल्ड। और दूसरा ये कि क्या हम अपने यहाँ ऐसे स्पेसेस होल्ड कर सकते हैं जिसमें बच्चे और एडल्ट एक साथ आ सकें, या फिर एक कॉरपोरेट हो गया जिसने अपने यहाँ, जनरली कॉरपोरेट्स में होता भी है फैमिली डेज होते हैं, सो कॉरपोरेट ने होस्ट कर लिया अपने यहाँ कि भाई बच्चे आए एंड पेरेंट्स आए।
1: सो निहाल गाओ रे।
2: The Bachpan is Great Hour isn't just an invitation for parents at home. It's a movement for everyone. Organizations, workplaces, schools, NGOs, neighborhoods can all step up to anchor the hour. For more details on how you can get involved, log on to ndtv.com/bachpanmanao. We hope you will all create your own Bachpan is Great Hour. 1 hour of undivided attention for children around you. And after that hour, reflect on what naturally unfolded. The creativity, the laughter, the masti, and the quiet moments. Then tell us which wonder you spotted. You can post a photo with hashtag BachpanIsGreatHour. You can email us at bachpanmanao@gmail.com or WhatsApp a voice note on this number. So this Daan Utsav, pledge your hour. Give your children the one gift money can never buy, your full undivided presence.

0: allegedly alleging that the issue goes beyond the Election Commission. Meanwhile, the Supreme Court has agreed an early hearing on the petition, raising questions over the decision making within the Election Commission of India.
1: मैं सीधा सीधा 1929 में साइमन गो बैक जो स्लोगन चला हुआ है आज एसआईआर गो बैक सर गो बैक तो जब तक सर वापस नहीं ले इस देश में युवा नहीं रुकने वाला है आने वाले दिनों में जैसा साइमन गो बैक एजिटेशन में भगत सिंह ने जो लड़ाई किए आज राहुल गांधी जी ने ये सर गो बैक में लड़ाई कर रहे हैं हम लोग सब मदद देना है बहुत जरूरी है
2: আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন এই জোটে যোগ দিতে
3: দিল্লি জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন
4: ভালো করে নজর রাখবেন এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয় দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে একহাতে জামাত একহাতে দিমাগি নকশাল
5: साथ राजेंद्र पाल गौतम है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक है इस क्या अहम रणनीति देखेंगे कांग्रेस को आने वाले
6: एक ही चीज़ है देश को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है पहले भी अंग्रेजों से आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी के बैनर तले लड़ा गया और अभी भी इस देश को देश के लोकतंत्र को देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है पूरी रणनीति बनाई जाएगी देश हमारे लिए प्राथमिकता है सत्ता आएगी जाएगी वो महत्वपूर्ण नहीं है देश बचना चाहिए देश का संविधान बचना चाहिए
5: आज की मीटिंग के बाद कल इंडिया अलायंस की मीटिंग है और बताया जा रहा है अखिलेश यादव उस बैठक में शामिल नहीं होंगे सपा होगी अखिलेश नहीं आ रहे हैं इसको लेकर अब सवाल खड़े हो
6: हर पार्टी का कोई ना कोई अपना पहले से फिक्स एजेंडा हो सकता है उनके टीम के कोई वरिष्ठ नेता आएंगे
5: माना जा रहा है कि जो बयानबाजियां पिछले दिनों में आपके नेताओं की तरफ से हुई उधर से भी हुई उसके असर के तौर पर
6: नहीं मुझे नहीं लगता
5: एक आखिरी में सर कल मायावती का जिस तरीके से बयान आया चंद्रशेखर को आजाद को लेकर के कि उनको धांधली करके जिताया गया आप कैसे इस बयान को देख रहे
6: हैं बीजेपी तो ये करती आई है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद करता है ईवीएम के साथ भी पूरा गड़बड़ी चल रही है वोट चोरी और वोट काटना जीते हुए को हराना
5: है कि चंद्रशेखर को
6: पॉसिबल है पॉसिबल है
5: बहन जी की बात का समर्थन कर रहा
6: है देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ बहन जी तो आज बोल रही हैं मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन देश के साथ गद्दारी कर रहा है जीते हुए को हरा देता है हारे हुए को जीता देता है
5: मेरे साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी हैं सीईसी के मुद्दे पर जो सीडब्ल्यूसी की बैठक आज हो रही है क्या आप लोग इस बैठक में तय करने वाले क्या रणनीति रहेगी
7: ये तो भैया अंदर जाकर ही पता चलेगा रेजुलेशन एक सारी डिस्कशन होगी उसके बाद क्या होता है अभी देखने वाली बात है इसको पहले नहीं बोला जा सकता
8: रमेश कुमार कैनॉट कंटिन्यू
0: In fact, to prove his point, Leader of Opposition Rahul Gandhi visited the Bela estate yesterday in Delhi, where he alleged that 729 voters there, only one remains on the rolls after the SIR. Listen in to what he said.
9: 729 vote hain. Yahan pe ek vyakti ko aapne SIR mein dala hai.
10: Okay.
9: Voter list pe naam hai, inka aapne utar diya unka naam.
10: Makan se kuch lena dena nahi hota hai vote ka.
9: इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है इनका नाम आपने किस बेसिस आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊं
0: A Delhi police head constable assaulted by a group of AAP supporters while he was videographing. He was in plain clothes, though, during the meeting, during a former chief minister Arvind Kejriwal's visit to Tilak Nagar. Now, according to the Delhi police sources, the head constable was recording the proceedings when a group of AAP supporters surrounded him and allegedly assaulted him. The whole row stemmed after Delhi minister Parvesh Varma, remember, slapped a 22-year-old man during a road inspection in West Delhi's Tilak Nagar. Meanwhile, the Delhi police has filed a non-cognizable report against the Delhi minister. A separate case has also been lodged against Aam Aadmi Party legislator Jarnail

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: शूटिंग स्पोर्ट में आए, करीब 2.5 साल ही हुए हैं?
1: नहीं मैम, 2019 में शुरू किया था, अभी हो गया टाइम। मेन ट्रेनिंग कोविड के बाद शुरू की थी मैंने रेगुलर।
0: ओके, तो तब से लेकर अब

0: और ओलंपिक चैंपियन है वो, और अभी उनके साथ काम कर रही हूँ पिछले एक साल से। वो इंडियन टीम के कोच हैं, कैंप में ट्रेनिंग करने को मिलता है उनके साथ, करते हैं टीम के साथ रहते हैं पूरा वर्क।
1: नीरू, 3 हफ्ते आप शायद ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे गेम से पहले, आप काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आपको पता था कि ये दिन भी आने वाला है?
0: ये तो देखो कहीं ना कहीं पता तो देखो दिन का किसी को नहीं रहता कि उस दिन क्या होने वाला है, पर ये था कि मैं अगर कंट्रोल में अपने आप को रखूंगी तो ये दिन भी सच हो जाएगा जो मैंने सोच रखा है। बस वही था, अपने आप को मोटिवेट रखना था, और उस टाइम मेरे कोच मनसेर सिंह ने काफ़ी हेल्प की थी कि मोटिवेट रहना है और तू पक्का जाएगी, तो जीत के आएगी। मैं टीम के 2 दिन बाद आई थी क्योंकि यहाँ पे
1: आपने सिर्फ यहाँ पर गोल्ड नहीं जीता है बल्कि एक टीम सिल्वर भी जीता है। आपको लगता है कि गोल्ड हाथ से स्लिप हो गया, वहाँ पे भी टीम में भी गोल्ड आ सकता था?
0: नहीं देखो वो तो थोड़ा लक पे भी छोड़ देते हैं हम अपना प्रोसेस। मेरे टीममेट्स ने भी बहुत अच्छा खेला है, ऐसा नहीं है, वो जो उनके हाथ में था उन्होंने किया है, जो मेरे हाथ में था मैंने किया है, वो तो टीम का एक एफर्ट होता है। हमने तीनों ने एफर्ट डाले हैं तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
2: All right, a spectacular performance there. Now, Jodhpur is witnessing a display of global air power as exercise Tarang Shakti 2026 enters its operational phase. The IAF is training alongside air forces from 7 friendly nations with American F-35s, French Rafales, Tejas and advanced support aircraft taking part under the theme Power in Partnership. The exercise focuses on strengthening military cooperation. Take a look.

0: पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। काशिल तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। देश को करतारपुर साहब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूं। इस कॉरिडोर के बनने के बाद अब गुरुद्वारा दरबार साहब के दर्शन आसान हो जाएंगे। गुरु नानक देव एक गुरु होने के साथ साथ एक विचार है, जीवन का आधार है। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है।
1: Words are easy to say. What matters is what got built, what got renamed, what got reopened and remembered because of them. And here's the record. A name asserted on the world stage, not just a rebranding exercise, a reminder to the world. An ancient seat of learning, burnt by invaders 8 centuries ago, revived with a new campus on the same ground. Temple corridors rebuilt at a pace India hasn't seen in centuries. Millets, jowar, bajra, ragi, what ancient Bharat ate off most Indian plates for generations, back on it now. A corridor across a hard border, reconnecting pilgrims to the resting place of Guru Nanak. A martyrdom 300 years old, finally given a date on the national calendar. 6 pieces of one record. Over the next half hour, we will go through each of them in detail to tell you why they are not just pieces of data. They connect to the larger civilizational arc of India. Let's first start with the idea that runs underneath everything on that main graphic. Civilization, deliberately now turned into statecraft. Not just decoration coming in on top of governance. It's a method, repeated often enough across a decade, that it now reads almost as a doctrine. We start with the scripture reinstalled in Parliament and the book that has now been gone and given all the way to Moscow.

0: यहाँ के आर्यंस है, हम शिव जी के भक्त है या राम जी के भक्त है, तो राम जी को बीजेपी ने
1: कब्जे कर लिया।
0: चोरी किए, तो इट्स अ इमोशन, इट इज एन सेंटिमेंट। तो क्यों हरे हरे महादेव क्यों नहीं बोलते, मोदी जी जय श्री राम बोलते कभी भी? देखो बीजेपी वाले कोई भी मंच पे हरे हरे महादेव कभी बोला क्या? जय श्री राम ही कहता है। हम हरे हरे महादेव बोले तो उन लोगों को पसंद नहीं है। गरीब लोगों का भगवान है शिव जी, अमीर लोगों का भगवान है राम जी। तो बीजेपी तो
1: ये
0: अमीर पार्टी है, तो इट्स अ सिंपल फंडा।
2: The statement of Mr. Revanth Reddy that Rama is different, Shiva is different, Hindus are not united, Rama is Dravidian, Shiva was Aryan, this type of statement made by Mr. Revanth Reddy, it appears to be in a ploy of him dividing the Hindus and uniting the Muslims. Varanasi has Shiva, Ayodhya has Lord Rama. Now both the places are from North India. How can we divide the Aryans and Dravidians and divide the gods? Mr. Revanth Reddy is playing to an international organization which wants to divide Hindu society in the name of caste, religion, and now he is bringing inter-religious fight between the religion.
3: All right, so a controversy there sparked with this comparison of Lord Ram, Lord Shiva, North and South. But with that, we'll slip into a short break. But on the other side, Aishwarya Rai Bachchan stuns in France. We'll get to the details.

0: for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
1: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
0: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
5: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
6: 32 years.
7: Welcome back. Now, Aishwarya Rai Bachchan dazzled in Paris as she walked the ramp for L'Oreal during the Paris Fashion Week. Aishwarya Rai Bachchan there taking to the ramp and dazzling the audiences. She was not alone. In fact, she was joined by others. She walked alongside actor Jane Fonda, Eva Longoria, supermodel Kendall Jenner, proving, be it Cannes or Paris, she's the queen.
8: A night to remember, as your worth starts here, because you're worth it. The icon, the showstopper, and the brand ambassador for over two decades, the radiant Aishwarya Rai Bachchan walked the L'Oreal Paris Le Défilé show with other celebrities such as Kendall Jenner, Simone Ashley, Eva Longoria, and many others at the Paris Fashion Week. The global icon stole the spotlight yet again with her grace and elegance as she walked the runway for the L'Oreal fashion show as part of the Paris Fashion Week on September 28th. She walked the runway adorned in a corseted black velvet fishtail gown, elevated her look with burgundy hair, jewel-encrusted tiara, and a beautifully embellished black cape, and obviously the star's signature bold red lips. Aishwarya Rai walked alongside Hollywood and fashion royalties like Jane Fonda, supermodel Kendall Jenner, Eva Longoria, and music icon Celine Dion. Her presence on the runway reminds the world that beauty should be celebrated in all its forms, and confidence is the best accessory. Mayank Chaudhary, NDTV.
7: And from glamour now to glory at the Asian Games, India has a new shooting star. She just scripted Asian Games history. Haryana's Neeru Dhanda has become the first Indian shooter to win an Asian Games gold in the women's trap individual event, smashing the continental record in the process. The 26-year-old followed up her team's silver with a stunning score of 28, bettering the previous Asian record of 24, a historic golden performance for India.
5: With me is the gold medalist from the Aichi Nagoya Asian Games in trap shooting. Many, many congratulations, Neeru. ये moment बेहद special है क्योंकि सबसे पहली बार एक लड़की ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड आया है. आपको ये बात किसी ने बताया कि पहली बार एक लड़की ने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड आया है?
6: हाँ मैम, अभी आज जीतने के बाद पता चला कि पहला है. उससे पहले पता होता तो शायद मैं कहीं कहीं भटक जाती, अच्छा था, नहीं पता था और मैं और अंदर से फाइट कर पाई. लेकिन ये था कि अपने देश के लिए गोल्ड तो जीतना है पर अपने प्रोसेस में रह के जीतना है, ऐसा था.
5: और बहुत टाइम नहीं हुआ है कि आप शूटिंग स्पोर्ट में आए, करीब 2.5 साल ही हुए हैं.
6: नहीं मैम, 2019 में शुरू किया था, अभी हो गया टाइम. मेन ट्रेनिंग कोविड के बाद शुरू की थी मैंने रेगुलर.
5: ओके, तो तब से लेकर अब तक मतलब बहुत जल्दी जल्दी आप एशियन गेम्स के सिर्फ पोडियम में नहीं बल्कि गोल्ड भी ले पाए हैं. तो मुझे थोड़ा बताइए क्या प्रोसेस आपने किया है इतनी जल्दी इतने बड़े मेडल को हासिल करने के लिए?
6: प्रोसेस तो मैम देखो, सब खिलाड़ी कोई भी वो करता ही है, लेकिन मेरे साथ सपोर्ट अच्छा था मेरे कोच का. मेरे कोच हर बार मुझे मोटिवेट रखना हर एक परिस्थिति में, चाहे फैमिली परेशानी है, गेम को लेके है, बाहर का कुछ भी है, मेरे को मोटिवेट रखना. मेरे मनसेर सिंह कोच पर्सनल कोच हैं ग्रास रूट से स्टार्टिंग से, और पीटर कोच वो भी बहुत मतलब मोटिवेट रखते हैं कि अपनी टेक्निक पे प्रोसेस रखना है. और ओलंपिक चैंपियन है वो, और अभी उनके साथ काम कर रही हूँ पिछले एक साल से. वो इंडियन टीम के कोच हैं, कैंप में ट्रेनिंग करने को मिलता है उनके साथ, करते हैं टीम के साथ रहते हैं.
5: नीरू, 3 हफ्ते आप शायद ट्रेनिंग नहीं कर पाए थे गेम से पहले, आप काफ़ी बीमार थे, हॉस्पिटल में थे. उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? आपको पता था कि ये दिन भी आने वाला है?
6: ये तो देखो कहीं ना कहीं पता तो देखो दिन का किसी को नहीं रहता कि उस दिन क्या होने वाला है, पर ये था कि मैं अगर कंट्रोल में अपने आप को रखूंगी तो ये दिन भी सच हो जाएगा जो मैंने सोच रखा है. बस वही था, अपने आप को मोटिवेट रखना था. और उस टाइम मेरे कोच मनसेर सिंह ने काफ़ी हेल्प की थी कि मोटिवेट रहना है और तू पक्का जाएगी, तू जीत के आएगी. मैं टीम के 2 दिन बाद आई थी क्योंकि यहाँ पे.
5: आपने सिर्फ यहाँ पर गोल्ड नहीं जीता है बल्कि एक टीम सिल्वर भी जीता है. आपको लगता है कि गोल्ड हाथ से स्लिप हो गया, वहाँ पे भी टीम में भी गोल्ड आ सकता था?
6: नहीं देखो, वो तो थोड़ा लक पे भी छोड़ देते हैं हम अपना प्रोसेस. मेरे टीममेट्स ने भी बहुत अच्छा खेला है, ऐसा नहीं है. वो जो उनके हाथ में था उन्होंने किया है, जो मेरे हाथ में था मैंने किया है. वो तो टीम का एक एफर्ट होता है, हमने तीनों ने एफर्ट डाले हैं तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं.
7: Alright, some breaking news now coming in, and the government is exploring alternative air routes and has been in talks with China. India is in talks with China to explore Xinjiang airspace as an alternate route for Indian Airlines. This amid the ban, Pakistan airspace ban. Now talks have been on for over a year to route flights via Houghton. MEA is engaging with Chinese counterparts on alternative routes. So the Indian government exploring these alternate air routes to secure access to airspace over Xinjiang and has been holding talks with China. The government also exploring possible air route over Houghton as it looks at alternative options. These talks have been underway for more than a year, according to sources. All right, with that, time for us to slip into a short break. More news and updates coming up on the other side. Stay with us.
9: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
10: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening?
9: The show that sets the prime time agenda.
10: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
9: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
11: You watch us, viewer, you trust us, and now your vote can speak for what we mean to you. Vote for NDTV at the ITA Awards 2026. You've got that power. Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link, and cheer for NDTV.
1: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
12: A healthier India doesn't happen in a day.
13: It starts with the health choices that we make every day.
14: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
12: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
11: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
14: One informed choice और एक healthier action.
12: Giving better health in more hands every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्थर मसाला।
5: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
1: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
4: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
3: One informed choice और एक healthier action.
1: Giving better health in more hands. Every day.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी, आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
5: सबका।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स, रंग बना रहे।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीने रंग रंगीने रे, देखो कैसे भी हो दिन रंग बना रहे,
1: बोझे पेंट रंग बना रहे।
2: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
3: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
4: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
5: Gold rush on the field.
3: Go for glory, only on NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गाइस मेरा तीसरा स्टोर अब एक्सपेंशन के लिए ना एक बैंक चाहिए। एनी सजेशंस? जीवन स्मॉल फाइनेंस मैन। स्मॉल
3: स्मॉल
0: अब पूरी पिक्चर देख लो। लोन ऑप्शंस बिग, सेविंग्स और एफडी पे इंटरेस्ट बिग, ब्रांच नेटवर्क बिग।
4: अगर स्मॉल होता तो मैं साइड में होता। और जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
10: यार लोन भूल गया मैरी।
11: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
12: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
10: स्मॉल फाइनेंस बैंक।
12: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
13: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट इट।
4: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: जो होना है वो तो होना ही है, रंगीले तू सदा मुस्कुरा, सदा सदा सदा मुस्कुरा। रंग रंग रंग रंग रंग रंगीन रंग रंगीन रे, देखो कैसे भी हो तीन रंग बना रहे।
1: बोझे पेंट्स, रंग बना रहे।

0: The party has demanded the CEC's resignation, immediate suspension of the SIR and even restoration of the 13 crore voters, alleging that the issue goes beyond the Election Commission. Meanwhile, the Supreme Court has agreed to early hearing on petition raising questions over decision-making with the Election Commission of India.
1: Rahul ji, entire working committee, congratulated Rahul Gandhi ji for taking up the biggest issue of Indian democracy through vote chori campaign. Last 18-19 months, he is continuously presenting to the nation with evidence that the Chief Election Commissioner is completely compromised. Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list. Both of them are compromised. Both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।
3: चुनाव दोबारा कराने चाहिए, क्योंकि ये अब साबित हो गया है कि हरियाणा का चुनाव पूरी तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके जन भावना को हराने का काम किया। हरियाणा में वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी की है इन्होंने, और आज वो साबित हो गया है जब ये 14 चिट्ठियां लिखी गई 10 महीने में, और पहली चिट्ठी उस दिन लिखी गई जिस दिन राहुल जी ने हरियाणा की प्रेस वार्ता करी। इसीलिए हमारी मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तुरंत हो, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई हो, और ये जिम्मेदारी सरकार की है।
4: आज के ममता बंदी होते दिल्ली जाच्छेन, ममता बंदी होते दिल्ली जाच्छेन, ममता बंदी होते दिल्ली जाच्छेन, ये जोटे जोग दिल्ली आते
5: जाच्छेन, दिल्ली जोटे প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন,
6: দিমাগি নামসারদের সঙ্গে পরিকল্পনা করতে যাচ্ছে, ভালো করে নজর রাখবেন, এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয়। দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে, একটাতে জামাত একটাতে দিমাগি নকশাল।
0: In fact, it was just yesterday when Rahul Gandhi visited the Bella estate in the national capital, where he alleged that of the 729 voters there, only one remains on the rolls after the SIR. Listen in.
7: 729 votes hain. Yahan pe ek vyakti ko aapne SIR mein dala hai. वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
8: मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का, इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है।
7: इनका नाम आपने आपने किस बेसिस, आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा।
0: Now, as per sources, the Maharashtra Chief Electoral Officer has sought 4 changes to the ECI Net software for SIR notice process. One of the key demands is to give electoral registration officers or the EROs greater discretion while handling the cases. Under the proposed changes, the EROs could decide cases involving logical discrepancies after conducting a hearing. The demand for the greater discretion had earlier also been flagged by the 2 election commissioners. The proposed changes would give EROs more options while processing the SIR notices.
9: So it's been said that 3.20 crores names have been deleted from the electoral roll during the SIR process. Is this true, and what are the reasons that

0: last 18-19 months, he is continuously presenting to the nation with evidence that the Chief Election Commissioner is completely compromised. The election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list. Both of them are compromised. Both of them are making as a design for winning election to BJP.
1: कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।
2: चुनाव दोबारा कराने चाहिए, क्योंकि ये अब साबित हो गया है कि हरियाणा का चुनाव पूरी तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलीभगत करके जन भावना को हराने का काम किया। हरियाणा में वोट चोरी नहीं, सरकार चोरी की है इन्होंने, और आज वो साबित हो गया है जब ये 14 चिट्ठियां लिखी गई 10 महीने में, और पहली चिट्ठी उस दिन लिखी गई जिस दिन राहुल जी ने हरियाणा की प्रेस वार्ता करी। इसीलिए हमारी मांग है ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तुरंत हो, उन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी कार्रवाई हो, और ये जिम्मेदारी सरकार की है।
3: आज के ममता বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাচ্ছেন, এই জোটে যোগ দিতে
4: দিল্লি জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন,
5: ভালো করে নজর রাখবেন। এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয়। দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে, একহাতে জামাত একহাতে দিমাগি নকশাল।
6: In fact, it was just yesterday when Rahul Gandhi visited the Bella estate in the national capital, where he alleged that of the 729 voters there, only one remains on the rolls after the SIR. Listen in.
7: 729 vote hain. Yahan pe ek vyakti ko aapne SIR mein dala hai. वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
8: मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का। इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है। इनका नाम आपने किस बेसिस, आप मुझे अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन दे दीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाऊंगा।
6: Now, as per sources, the Maharashtra Chief Electoral Officer has sought 4 changes to the ECI Net software for SIR notice process. One of the key demands is to give electoral registration officers or the EROs greater discretion while handling the cases. Under the proposed changes, the EROs could decide cases involving logical discrepancies after conducting a hearing. The demand for the greater discretion had earlier also been flagged by the 2 election commissioners. The proposed changes would give EROs more options while processing the SIR notices.
9: So it's been said that 3.20 crores names have been deleted from the electoral roll during the SIR process. Is this true, and what are the reasons that that deletion?
10: The statement is not correct. Before the SIR started, we had the total number of electors around 9 crore 78 lakh, and in the draft roll this has come down by 2 crore 6 lakhs. So the total number of electors as per the draft roll is 7.7 crores. 7 crore 71 lakh people is the number in the list, so it is a reduction of 2 crore 6 lakh people. And the main reason is absent or shifted, which is around